लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देख तेग जग मैं दू चल राखे आप मुहे और ना दले तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जाने अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम

वार तोहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बाहर करो कविता बिदनन्ना। कृष्ण जथा मात।

पद सवैया पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र दे।

गुर ते जानी सुन ते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया भर पूरे बिन मंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुन ते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया।

पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर।

तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम्ही जानी नानक दा तुदया गैर दास हमारी जियो पिंड सब

वीया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चती तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड से।

देवे झड़का तो फिर बोल पियाना मिठा है। वो कन्ना देवे झड़का तो फिर बोल पियाना।

0: बहुत बहुत धन्यवाद जी, सिख संगतां दा बड़ा प्यार दा सबूत दिता। इस तों अगे सच्चे सतगुरां दे कौतकां दा वर्णन आप सिख संगतां दे नाल इसे तरह तुसीं प्यार बख्श दे रहे हो ते प्यारे हो, असी दिलों तुहाडे नाल गुरु महाराज जी का इतिहास सांझा करन दा यतन करांगे। सो प्रबंधक वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद, किड्डा वड्डा उपराला कर रहे ने शुद्ध गुरबाणी पाठ बोध। गुरु प्यारे ये बहुत वड्डा उपराला है, सतगुर कृपा करन इसे तरह वीर संगत नूं और अपने जिहड़े छोटी जनरेशन है साडे बच्चे है उन्हां नूं गुरबाणी दे नाल जोड़न दा इन्हां दा उपराला है। गुरु महाराज कृपा करन। सो ढाडी जत्थे नूं बुलाओ फतेह, इतिहास बोलदिआं विचारां करदिआं बहुत सारियां गलतियां हो जांदियां, तुसीं बख्शण योग रहमत करिओ, सतगुर कृपा करन। आओ बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी बलबीर सिंह जी बिहारीपुर अते उन्हां दे जथे दा जिन्हां ने आप संगत नूं पावन पवित्र गुर इतिहास शहीदां दा पावन इतिहास ढाडी वारा राही सुना करके निहाल कीता है। महाराज कृपा करन, चढ़दी कला दी दात बख्शिश करन, इस तरह पंथ कौम दी गुरमत प्रचार प्रसार राही सेवा करदे रहन। हुण रोजाना दी तरह गुरबाणी पाठ बोध समागम दी आरंभता होण जा रही है। जो पिछले तीन महीने तो गुरबाणी दे पाठ बोध समागम 3 मई तो आरंभ होए सन, 30 अगस्त नूं भोग पैणगे, जिस दे विच पंथ दे प्रसिद्ध विद्वान जन बुलारे जन महान शख्सियतां समाप्ति दे उपर हाजरियां भरन वास्ते पहुंच रही है। विशेष तौर पर बहुत ही सत्कारयोग भाई जरनैल सिंह जी नितनेम वाले, वह भी 13 अगस्त तो लैके 30 अगस्त तक पाठ बोध दे विच हाजरियां भरनगे। पंथ दे महान विद्वान ज्ञानी दलजीत सिंह जी दमदमी टकसाल USA वाले, वह भी इन्हां समागमां विच हाजरियां भरनगे। 26 अगस्त तो लैके 30 अगस्त तक भाई सिपाही मनप्रीत सिंह जी कानपुरी रोजाना ही शाम के समय 8 बजे तो लैके 9 बजे तक गुरबाणी कीर्तन दियां हाजरियां भरनगे। सुभाव संगत नूं बेनती है ना सारे समागमां दे विच चढ़दी कला दे नाल आप संगतां ने हाजरियां भर के सेवावां करके महाराज दर कर दियां खुशियां प्राप्त करनियां जी। 15 अगस्त जो साध संगत जी भारत दे विच आजादी दा दिवस कह के मनाया जांदा है, सिखां दे विच इस नूं काला दिन दे कहते, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान दी वंड नहीं होई, एक पंजाब दी वंड होई है। आप रोजाना अरदास विच बेनती करदे हां कि श्री ननकाणा साहिब अते होर जिहड़े उत्थे पावन स्थान ने, पहले पातशाह महाराज जी दे, चौथे पातशाह महाराज जी दे, पंचम पातशाह महाराज जी दे, ऐसे अनेकां ही पावन पवित्र स्थान ने पाकिस्तान पंजाब दे विच जिस दे दर्शनां दे वास्ते हर एक गुरु नानक नाम लेवा सिख मन दे विच आसा करदा है। सो ये जिहड़ा भारी नुकसान है ये पंथ सिख नूं होया है सिखां दे ताई। सो हिंदुस्तान दी वंड नहीं होई, पंजाब दे दो हिस्से बने, सो इस नूं काला दिन मनाउण वास्ते 15 अगस्त नूं जो हर साल ही जिथे भी सिख वसदा है, जो भारत की एंबेसी वैनकूवर विखे है सिखां वल्लों मुजाहरे किए जाते ने, सो भाई ਸ਼ਨਿਸ਼ਰਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਬੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ, ਜੋ ਬਚਨ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। 37 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1969 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 8 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਜੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਜਣਗੇ। 17 ਤਰੀਕ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ

आओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चार होर संत सांग हर चरण बोहित उदरते लै मोर गर्भ कुंट मह जिन्ह धारियो नहीं बिख बन मह होर हर सग अधिक गर्त संसार सागर कर दया चार होर अधिक गर्त

प्रभ एक अनक सर्वत पूर्ण बिख अगन न जली गह पुजा लीनो दास अपनो जोत ज्योति रली प्रभ चरण सरण अना

पूर रहे सर्वत्र मैं सो पुरख बिधाता मार्ग प्रभका हर किया संतन सांग जाता पुरख बिधाता घाट घाट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्व सुख पावे तेल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निध गाए सहज।

कत जाही मीन बिछोहा ना सह जाल बिन मार पाही हार बिन क्यों रही है दुख किन सही है चात्रिक बूंद प्यासिया कब रैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा।

दर्स बिहुना साध जान खिन टिकन न आवै हर बिन जू रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतहु न जाय निखेदिया हर स्यों जाय मिलना साध संग रहना।

भगत वछल सुन अंचलो गहया घट घट पूर समानया सुख सागर उपाया सहज सुभाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

0: मोलका छूट गई संसारी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: मान रे राम भगत चित लाइए, गुरमुख राम नाम जप हिरदय, सहज सेते कर जाइए रहाओ। भरम भेद पाओ कबहु न छूटस, आवत जात न जानी, बिन हर नाम को मुक्त न पावस, डूब मुए बिन पानी। धंधा करत सगली पात खोवस, भरम न मिट सगवारा, बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी, अंधले तंद पसारा। अकुल निरंजन सिउ मन मान्या, मन ही ते मन मुआ, अंतर बाहर एको जान्या, नानक अवर न दुआ। भैरव महला पहला, जगन होम पुन तप पूजा, देह दुखी नित दुख सह।
1: जगन पाठ कसके करना, जगन नहीं करना, जजे ते अदक दा प्रभाव दे के उचारण करना। जिवें ज्ञानी जी ने बड़ा विशेष महंगा शब्द है, जगन होम पुन तप पूजा, देह दुखी नित दुख सह।
0: राम नाम बिन मुक्त न पावस, मुक्त नाम गुरमुख लह। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, बिख खावे बिख बोली बोले, बिन नावे निहफल मर भ्रम ना रहाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे, संध्या कर्म ते काल करे, बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, सीरत गवन अत भ्रमण करे।
1: सिखा पाठ बोला करते दोरे।
0: दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत न आवे, जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई, वस्त्र छोड़ तन नगन भया। राम नाम बिन तृप्त न आवे, किरत कै बंद है भेख भया। जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र कत्र तू सर्व जिया। गुर प्रसाद राख ले जन कहो, हर रस नानक झोल पिया। राग भैरव महला तीजा, चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जात का गर्व ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई।
2: गुरु गुरु खालसा साध संगत जीओ, धन धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज। सतगुरु जी का दीवान लगा होया सी, एक बहुत ज़्यादा पढ़िया होया विद्वान पंडित सतगुरु जी दे पास आया, जिस दे हिरदे दे विच जात दा हंकार बहुत ज़्यादा सी। उहदे अंदरों जात दा अभिमान, जात दा हंकार तोड़न वास्ते, मेटन वास्ते, खत्म करन वास्ते सतगुरु जी ने यह पावन पवित्र बचन अपने सुभाईमान मुखारबिंद तों कीते। सतगुरु जी ने कहा कि भाई, जातां दे विच जीवां नूं ये इंसानां नूं बंदियां नूं मजबां दे विच तुसीं वंडिया होया है, पर सारयां दे विच परमात्मा परिपूर्ण हो रहा सारे जीवां दे विच, अते इन्हां बंदियां दे विच इन्हां जीवां दे विच परमात्मा ही परिपूर्ण हो रहा है। तां सतगुरु जी ने बचन उचारण कीते कि जात का गर्भ ना करियहो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। इस प्रकार दे वचन सतगुरु जी ने उचारण कीते ने। आओ जी सरवण करिए प्यार दे सहत।
0: जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चले बहुत विकारा रहाओ। चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब ओपत होई। माटी एक सगल संसारा, बहुविध भांडे घड़े कुमारा। पंच तत् मिल देही का आकारा, घट वध को करे बिचारा। कहत नानक एहो जियो, कर्म बंद होई, बिन सतगुर भेटे।

इस मन कहो कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई रहाओ। मूल मोह कर करते जगत उपाया, ममता लाए भरम पोलाया। इस मन ते सब पिंड पराणा, मन कै विचार हुकम बुझ समाणा। कर्म होवै गुर कृपा करे, एहो मन जागै इस मन की दुविधा मरे। मन का सुभाव सदा बैरागी, सब मह वसै अतीत अनरागी। कहत नानक जो जाने पेयो, आद पुरख निरंजन देयो। भैरो महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा।

तीजा गोविंद प्रीत सन कादिक उधारे राम नाम शब्द बिचारे हर जियो अपनी कृपा धार गुरमुख नामे लगे प्यार रहाओ अंतर प्रीत।

रहाओ। गुर का शब्द सब रोग गवाए, जिसनो हर जियो लाए, नामे नाम मिले वडियाए, जिसनो मन वसाए, सत गुर भेटै ता फल पाए, सच करनी सुख सार।

तन दुख ना होई। भगत भगत कहे सब कोई, बिन सतगुर सेवे भगत ना पाईए, पूरे भाग मिले प्रभ सोई। रहाओ मनमुख मूल गवावह, लाभ मागह लाहा लाभ किद्दू होई, जमकाल सदा है सिर ऊपर, दूजे पाए पत खोई, बहले भेख पवह दिन राती, होमै रोग ना जाई, पड़ पड़ भूल पड़ पड़ भलूजह बाद वखाण है, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेवह परम गत पावह, नाम मिलै वड्याई, नानक नाम जिना मन वसया, दर साचै पत पाई, भैरो महला तीजा, मनमुख आसा नहीं उतरै, दूजे पाए खुआए, उदर नैसान ना भरिए कबहू, तृष्णा अगन पचाए, सदा आनंद राम रस राते, हृदय नाम दुविधा मन भागी, हर हर अमृत पी तृपताते। रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी,

माहे समाए गुरमुख ज्ञान तत् बिचारा ज्योति ज्योत मिलाए सो प्रभ साचा सद ही साचा साचा सब आकारा नानक सतगुर सोजी पाई सच नाम निस्तारा भैरव महला तीजा कल मह प्रेत जिनी राम ना पछाता सतयुग परम हंस बिचारा।

0: तिन मन दुख ना होई। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किछु न जाने। सबदे मेल मिलाया रहाओ, आन दिन भगत करह दिन राति, दुगदा सबदे कोई। सदा निर्मल है जो सच राते, सच वस्या मन सोई। मूर्ख दुविधा पढ़ मूल ना पछाणे, बिरथा जन्म गवाया।
1: मूर्ख दुविधा पढ़ है, थोड़ा जा भारा करके थले आहे दा इशारा भी लगा। मूर्ख दुविधा पढ़ है, मूल ना पछाणा है, बिरथा जन्म गवाया है। नहीं तुहाडे हां जी, हाहे दे चिन्ह तो बिना शुद्ध पाठ है नहीं। चिन्ह मेरे को लगा पर हाहे दे चिन्ह तो बिना ही शुद्ध पाठ। हां
0: जी, मन मूर्ख दुविधा पढ़े, मूल ना पछाण है, बिरथा जन्म गवाया। संत जना के निंदा करे, दुष्ट दैत चिड़ाया।

नानक हरण आखस नखी बिदारिया अंध दर की खबर ना पाई। राग भैरव महला चौथा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर जन संत कर कृपा पाग लायण गुर सबदी हर भज सुरत समायण। मेरे मन हर भज नाम नारायण हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख भव जल हर नाम तरायण। रहाव संगत साध मेल हर गायण गुरमत्ति ले राम रसायण। गुर साधु अमृत ज्ञान सर नायण सब किलविख पाप गए गावायण। तू आपे करता सृष्ट तरायण।

0: जिस का तुम हर राखिया पावै तिसकै नेड़ै कोय न जावै तू जल थल महियल सब तै भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर।
1: हांजी सब तै पाठ इकट्ठा करना पोथियां च अलग अलग छापिया गया है। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, सब तै साब तै इदा नी, सब तै भरपूर। हांजी।

मंडित बिन बूझे कहा मन ठहराना नाम बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहा बैरागी बिन हौ त्याग कहा को त्यागी बिन बस पंच कहा मन चूरे नाम बिना सद सद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान बिन पै कथनी सर्व विकार कहो नानक दर का बीच।

क्योंकि हाकम अन कोई शब्द वरतेगा। पिछले समय की नहीं होया जी, की कुछ नहीं वापरिया। उन्हें कहा मैं जुतियां मार के तेरे वाल उड़ावांगा। सिख ने अगे क्या याद रखी, तू मेनू जुत्ती नहीं मारनी, मैं जुत्ती मार के अपने मरण तो पहला तेनू अगे ला के ले जावांगा। यह शब्द कचहरी चो, मैं तेनू अपने अगे लैके जावांगा, तू कौन है मेनू जुत्ती मारने वाला। इथे फिर याद रखियो भाई साहब नू कुछ विद्वान कहिंदे चरखड़ी ते कमाया गया। ये दो तरह की हुंदी चरखड़ी, पता होना आप जी नू। एक हुंदी है जिदे ते बन्निया जांदा है, एक हुंदी है नाल उहदे दूजी चरखड़ी, चरखे दा वड्डा रूप ही कह लो। उस दूजे हिस्से दे विच हुंदे ने पत्ते ब्लेड, एक पासे जदों दोनों घुमांदे ने ना जी, उस वक्त फिर उस शरीर नू तुंबा तुंबा करके जिवें रूह पिंजीन है ना, इस तरह ब्लेड सारी बॉडी नू खत्म कर देंदे। इथे भाई साहब नू पहला चरखड़ी चरखड़ी ते तां घुमाया, ब्लेड वाली नहीं, उंज चरखड़ियां ते घुमा के शायद तसीए दईए ते मन जाए। सची मुची जदों पूरा घुमा दिता, बेसुध हो गए, थले उतारिया, दो बंदे पकड़ के लै गए, छद रात पै गई। दूजे दिन फिर जकरिए ने कहा मैं तेनू जिहड़ी कल गल कही सी, इतिहास कहिंदा सिख दी जबान सी अकाल अकाल अकाल। उन्हें कहा मैं तेनू मुसलमान वेखना चाहना। नवाब कह तू हुस हो मुसलमान, तब तेरी छड़ांगा मैं जान। भाई साहब कहिंदे ने मैं इको अरदास करके आया, मेरी सिखी केसा सवासा नाल निभे। चिड़ गया केसा तो। उस वक्त कहिंदा मैं नवे बला, उत्थे शब्द नवे वरते, मैं किसी दी जात दी गल नहीं कर रहा, आ केस जिदा तेनू माण है तू देखी मैं कैंची नाल कतर के तेरी अखा सामने रखांगा। यह गल आम तौर ते साडे बंदे नहीं सुनांदे, क्योंकि जिथे भी गुरु दे सिख दी अजमत खेड वापरदी असीं डर जांदे। हर एक नू अपने वर्गा ना समझिए प्यारियो। ओ बंदगी वाली रूह, उन्हें कहा मैं नाई बुला के तेरे केस कतल करावांगा, केस तेरा जूड़ा ला देंगा। सच्ची मुची आए जी, सच एवे के भाई साहब दी दृढ़ता इन्नी के केस नहीं कट सके। साडा इतिहास कहिंदा लोहे दीआं तारां दी तरह। उस तो बाद फिर उन्हें मोची बुलाया। याद रखियो कहना बहुत सौखा है। आ जिन्हें तस्वीर पेंट की ना भाई साहब दी, बिल्कुल इन बिन इसे तरह ही वापरिया सी। उस वक्त मोची नू बुलाया, वो अपनी रंबी तिखी करके लियाया। भाई साहब नू बनना चाहते सन, क्योंकि जो खोपड़ी लानी है ते कुदरती तौर ते सट वजेगी तां ते किते हिले ना। भाई साहब ने कहा ना होए, रस्सियां संगलों विच मैनू ना बन्नो, तुसी खोपड़ी उतारनी उतार लो, मैं इसे तरह आराम नाल बैठ जांगा। बैठे इस तरह संजी, अज जिवें असीं बहिंदे आ ना, दोनों बाहां पिछे कर लईआं ते दोनों हाथां दीआं जिहड़ियां तलियां सन खब्बे सजे इस तरह रख के एक भाई साहब की लत जिहड़ी सी अगे उहनां कर ली, जिवें चौंकड़ा मारी दा। इस तरह भाई साहब भाई तारू सिंह जी बैठ गए, लोकां दा इकट्ठ भीड़ कट्ठी। उस वक्त फिर मोची ने किवें लाई खोपड़ी, मैं यह बेनती करनी चाहना। उन्हें रम्मी सामने तिखी कीती, इस करके सी शायद डर जाए। उन्हें फिर भाई साहब दे मत्थे दे आ जिहड़ा आ पासा ना जी आ साडा, इस पाथे अगों नीवी करके रम्मी पिछों पूरे जोर नाल हथौड़ा मारिया, पहली सट मत्थे दे उत्ते मारी। जदों उत्तों चमड़ी उतरी, पूरा जिहड़ा चेहरा सी भाई साहब दा एडा सोहना स्वरूप जी, सारे दा सारा चेहरा खून ते बोटियां नाल भरिया गया। पहली इथों इहनू कटदा होया थले थल्यो चली गया, ए पिछों इथों कन्न तो कटिया, फिर दूजे पासों फिर कटिया गीची तक। जदों आ गई फिर जकरीए वल देखिया, उन्हें कहा कट ला दे पूरी। फिर पूरे जोर नाल गीची वाले पासों मार के रंबी हथौड़ा भाई साहब दी खोपड़ी केसा दे नाल ला दित्ती। रतन सिंह पंगू लिखदे आ, पैनी थी रंबी करी धर माथ्यों दई दबाए, माथे ते कन्ना तौड़ी गीचियों दई पटवाए, मथे तो कन्न कन्ना तो गीची तक। भाई साहब दा सारा चेहरा गुरमुखो, पिंडा सारा बोटियां ते अपने खून नाल भिज गया। सिख अकाल काल कही जांदा है आम तौर ते।

मन वच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तारो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पश जो उदर भरों

अवख दे नाम आज संसार वाल जाती पाईए। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर दें, सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल। अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमहे जुगाद गुर ए नमहे सतगुर ए नमहे श्री गुरुदेव ए नमहे अष्टपदी सिमरम सिमर सिमर सुख पावो
2: कल क्लेश तन माहे मिटावो
1: सिमरम जास विषम पर एकै
2: नाम जपतया गणते अनेकै
1: वेद पुराण सिमरत सुधाखिर
2: इने राम नाम एक अखिर
1: इनका एक जिस जी बसावे
2: काकी महिमा गनी न आवे
1: कांकी एकै दर्श तुहारो
2: नानक उन संग मोहे उधारो
1: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम
2: भक्त जना कै मन विश्राम रहा
1: प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै
2: प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभ कै सिमरन काल पर हरै
2: प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै
1: प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै
2: प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै
1: प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै
2: प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै
1: प्रभ का सिमरन साध कै संग
2: सर्व निधान नानक हर रंग
1: प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध
2: प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
1: प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा
2: प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी
2: प्रभ कै सिमरन दरगै मानी
1: प्रभ कै सिमरन होए सो भला
2: प्रभ कै सिमरन सफल फला
1: से सिमरन जिन आप सिमराए
2: नानक ताकै लागो पाए
1: प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा
2: प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै
2: प्रभ कै सिमरन सब किछ सूझै
1: प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा
2: प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए
2: अमृत नामृत माहे समाए
1: प्रभ जी बसै साध की रसना
2: नानक जन का दासन दसना
1: प्रभ को सिमरह से धनवंते
2: प्रभ को सिमरह से पत बनते
1: प्रभ को सिमरह से जन प्रवान
2: प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान
1: प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे
2: प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे
1: प्रभ को सिमरह से सुखवासी
2: प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी
1: सिमरन तेला के जन आप दयाला
2: नानक जन की मगैर वाला।

0: परमात्मा दे घर विच सारा कुछ सत्संगी हे भाई, जिस परमात्मा दे घर विच सारा कुछ है, नौ निध भरे भंडार। रोज आप पढ़ते हैं नितने विच नाम निधि अठारह सिद्धि। सो सत्संगीओ, परमात्मा जिहड़ा वाहिगुरू है, सब निदान दस अष्टसिधान ठाकुर कर तल तरिया। सब निदान दस अष्ट सिधान दा भाव सारे खजाने नौ निधियां, ठाकुर कर करदर्शन दा हथ दियां, तल दा भाव तलियां। परमात्मा दे हथां दियां तलियां दे उत्ते नौ निधियां अठारह सिद्धियां सारे खजाने रखे हुंदे। मतलब सेवक मंगे ते जेब चों कढ़दिआं देर ना लग जाए, इदां ही रखे हुंदे हत्थां दियां तलियां ते। सो गुरु जी मेहर करदे ने, सारा कुछ वाहिगुरु दे हथ विच है।
1: तिस की कीमत ना पवै भाई, ऊंचा अगम अपार।
0: गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे भाई, ऊंचा है अगम मन दी पौंच तो परे है, पारावार तो परे है। सारा कुछ परमात्मा दे हथ विच है, ओदी कीमत नहीं।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: मैं एक दफा जींद वेच गौ लै बैठा, खरीद बैठा, बड़ी खूबसूरत सी चंगी लगी मैनू। हर साल मैं उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ज्योति जोत समान पुरब ते जाना हुंदा। महापुरखां दा डेर है ओ मनांदे ने, संत जीवन शाह सिंह जी दा डेर। ओ मेरे कोल पुछण लगे, सुनिया तुसी गऊ खरीदी है? मैं क्या, जींद ते रोहतक ए गऊआं करके मशहूर है, अच्छियां अच्छियां गऊआं। मैं कह मैनू बड़ी चंगी लगी है, मैं ले लई। ओ आ गए, कहण लगे मैनू दिखाओ। मैं कह देखो, जींद शहर दे बड़िया सरावां ने जो गऊआं नाल भरिया रहिंदियां ने। मैं चल के दिखाई, उन्होंने अपना हाथ सिर ते दे मारिया। कहने लगे ज्ञानी जी इनू लेके जा रहे हो? मैं क्यों, ये ठीक लक्षण नहीं ने, औखे होवोगे, दुखी होवोगे। ये सिर्फ दिसण नू खूबसूरत है, बाकी ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थानू लक्षणा दा पता नहीं, सानू पता है। जे तुसी गौ लेनी है ते असी थानू लेके देंगे। ओ जिस वपारी कोल मैं लई, जाके संता ने उन्हों डांटिया भी मस्कीन, और इन्हू गौ तक डंग दी देनी सी, ये की कीता है तू? ओ हाथ जोड़ के कहन लगा, महाराज जी की करिए, इन्होंने आप ही पसंद की है, इन्होंने आप ही पसंद की थी। वो कहन लगे इन्हों लक्षणा का पता नहीं है। वाकई मैनू गऊ दे लक्षणा का पता नहीं सी। कुछ लक्षण ऐसे ने, दिस पैंदा इराकी घोड़ा है, वधिया घोड़ा है, ये वधिया गऊ है। लक्षण ही दस देंदे ने, ये जमीन वधिया है, धरती वधिया है, ऐसे खोजी मौजूद ने। अज ते विज्ञानक ढंग नाल खोज करदे ने, ये धरती बड़ी उपजाऊ है, बहुत वधिया है। लेकिन पुराने जमाने दे सूईए लक्षण देखदे सन। तो मैं अर्ज करा, मनुख धार्मिक है, धार्मिक मनुख दे कुछ लक्षण होंदे ने, ये भी मैं अर्ज करदे। उन्हां लक्षणा तो पता चलदा है धार्मिक है, मनुख संत है, भगत है। लक्षणा तो पता चल रहा है संत है, भगत है। ये लक्षण ते मैं बाद दे बयान करांगा। पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये पावन पवित्र शब्द, वो कहिंदे ने मैं धर्म दे मार्ग ते चलिया ते हां अपने उत्ते लेंदे ने, मैं उस बच्चे दी तरह

धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द बड़े ध्यान नाल सुनना। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया सरवन ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु हे गुरु तू मेरी बांह पकड़ मेरी उंगल पकड़ मैं नहीं चल सकता मैं ते गिरदा। वाकर दी लोड़ पैंदी है छोटे मासूम बच्चे नू चलन वास्ते। मां बाप दी उंगल पकड़ के चलना सिखदा है। सतगुरु कहिंदे ने हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज चलना सिखिया तू कितना क चलेगा एक कदम दो कदम गिरेगा। धार्मिक तल ते किवें पहचान करोगे चल भी रहा है ते गिर भी रहा है। सच बोलिया चल पिया झूठ बोलिया गिर गया। अंदर दया दा वासा होया है चले है अंदर कठोरता दा वासा होया है गिर गया। अंदर दान दी रुचि पैदा हुई है चल पे अंदर बेईमानी दी रुचि हुई है गिर गया गिर गया। अंदर नितनेम करण दा चाव पैदा होया है चल पे है पर गंदा लिटरेचर गंदा साहित्य पढ़न दा चाव पैदा हो गया गिर गया। हमेशा शरीर करके बच्चा बच्चा नहीं रहेंदा। धार्मिक तरते थे कई 70-80 साल तक भी बच्चे ही बने रहेंदे ना कुछ भी नहीं चलते ने गिरते ने सत्संग भी कर लेंदे ने कुसंगत भी कर लेंदे ने दान भी कर लेंदे ने बेईमानी भी कर लेंदे ने सच भी बोल लेंदे ने झूठ भी बोल लेंदे ने। जीवन भर ऐसा चलता है। इस वास्ते ईरानी सूफी संत सादी ने ते साफ कह देता है बुजुर्गी बा अकलस्त नके बा साल तवंगरी बा दिलस्त नके बा माल। बुजुर्गी उम्र करके नहीं है भई ये 70 साल दा है 80 साल दा है 90 साल दा है। कहिंदे ने उम्र करके बुजुर्गी नू ना नापो अकल करके नापो। अकल कितनी है समझ कितनी है। कई तन करके बुजुर्ग होंदे ने अकल करके बच्चे ही होंदे ने बच्चियां दी गल करदे बिल्कुल बचपना होंदा है। इस तो उल्ट भी हो सकता है। कई शरीर करके ते बच्चे होंदे ने अकल करके बुजुर्ग होंदे ने। शरीर करके ते साढ़े 5 वरिया दे ने धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जिस दिन गुरुगद्दी ते बैठे ने। अकल करके 100 साल देने बुजुर्ग ने महान ने। शरीर करके जो दीवारा दे चिने जा रहे ने मासूम बच्चे ने मासूम बच्चे ने अकल करके बुजुर्ग ने बुजुर्ग ने। इस तो उल्ट भी है। शरीर करके ते बुजुर्ग ने 70 साल 80 साल हो गए अकल करके निरे ही बच्चे दे बच्चे ने। मैं कैलिफोर्निया दे कई गुरुद्वारियां च देखे 70-80 साल दे बुढ़े 10-11 बजे आ जांदे ने गुरुद्वारे। दिन भर ताश खेडदे ने कई गुरुद्वारियां च गप्पा मारदे ने निंदा उस्तद करदे ने। फिर जो संध्या होण लगदी है रहराज साहब दा पाठ शुरू होंदा है कथा कीर्तन दा वेला भजदे ने इंज जिवें बिच्छू कट्टेगा भजदे ने। हुण गुरुद्वारे दा नाम है की लिया मैनू कहना पिया एक नू जद जाण लगे मैं कह 3 जथियां दा कीर्तन है अज। एक जथा दरबार साहब तो आया 2 होर वड्डे जथे दिल्ली तो आए ने ते मैं कथा भी करनी है। रुक जाओ कहिंदे इह ते हुंदा ही रहिंदा इत्थे होर की होणा इत्थे ऐ हुंदा ही रहिंदा। तो उत्थे मैनू कहना पिया ये उम्र करके बुजुर्ग ने अकल करके बच्चे ने अकल करके बच्चे गुरु हर

कृष्ण जी महाराज तन करके शरीर करके बच्चे ने अकल करके बुजुर्ग ने कलगी धर दे लाडले तन करके बच्चे ने अकल करके बुजुर्ग ने 7 साल दा प्रहलाद बुजुर्ग है 60 वर्यां दा हरनाकश बच्चा है। प्रहलाद नू कहिंदे तू जपया कर जल हर नाकश थर हर नाकश, जब तू जपेगा ते तेनों देख के बाकी बच्चे भी जपनगे। ते 7 वर्यां दा प्रहलाद कहिंदे बापू की बच्चियां वाली गल कर दे हो, जल है राम थल है राम। ये 7 साल दा बच्चा बुजुर्गां वाली गल करदा है और 60 साल दा बुढ़ा बच्चियां वाली गल करदा है। बच्चियां देच कदी कदाई कोई बुजुर्ग होंदे ने, बुढ़ियां देच बहुते ते बच्चे ही होंदे ने, गुस्ताखी मर बच्चे ही होंदे, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, जिंदगी एवें गवाई जांदे। ताश खेडदे होयां नूं एक सज्जन ने पूछ लिया की कर रहे हो, समा पास पै करदे आ। फिर मेनू विचकार बोलना पे, समा रहा भी है, तुसी ते आखरी दहाने ते बैठे हो, समा रहा भी है, समय नू सफल करो जिड़ा थोड़ा बहुत रह गया। आजू समझ कच बिगड़े हो ना ही बजले नाम मोरा, अजे भी कुछ नहीं बिगड़े तो संभाल कर ले, पर नहीं अकल नहीं इतने। शेख सादी कहंदे ने बुजुर्गी बा अकल अस्त नखे बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त नखे बा माल। अमीरी माल असबाब तो ना ना पोए दे कोले इतने मकान ने, इतनिया महल माड़िया ने, इतना कारोबार है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी धन संपदा है। शेख सादी कहंदे ने ए अमीरी दी निशानी नहीं, दिल कितना वड्डा है। इस तो पता चलेगा शूम है कि अमीर है, गरीब है कि अमीर है, दिल तो ना पो। मुहम्मद साहब दे निकटवर्ती हजरत उमर ए बसड़ा तो बगदाद जा रहे सन, उठते रस्ते दोपहर हो, नखलिस्तान उसनु कहने जिते 4-5 दरख्त होवन, थोड़ा जिहा पानी होवे सरोवर, उन्हों नखलिस्तान कहंदे ने। अरब देशां विच आखिर उसकी बहुत महानता होंदी है। उत्थे रुके आराम करन, उठ नूं दरख्त नाल बने है, पानी नाल मूंह धोता है। एक नान कोल सी रोटी, खोल के जैसे खान लगे एक भिखारी आ गए। भिखारी नहीं सी पर चूंकि मंगदा पिया सी इस वास्ते मंगता। उन्हें आखिया हजरत मैं 3 दिन दा भुखा। कूत शहर दे च मैं जाना है, अजे बहुत दूर है, मैं भुखा पहुंच भी सकांगा कि नहीं, पैदल हां, तुहाडे कोल उठ है, बेहतर होवेगा इस नान दा चौथा भाग मैनू दे दो, चौथा हिस्सा, मेरी थोड़ी भुख मिट जाएगी, मैं चल पवांगा। हजरत उमर ने सारा नान ही दे दिता, ले। पर ओ भी समझदार बंदा सी, कहन लगा नहीं तुसी भुखे जाओ, मेरा हिरदा ए भी कबूल करन नू तैयार रहे, मैनू इसका चौथा भाग दे दो। पता है हजरत उमर ने की आख्या, तू 3 दिन दा भुखा, मैं अधे दिन दा भुखा, मेरे ते नान खाना हराम है, ए ले तू। उस मनुख ने आख्या, पहली दफा एक अमीर मनुख देखे है, अमीर मनुख। दोपहर दा वक्त से महात्मा बुद्ध एक पिंड तो दूसरे पिंड जा रहे हैं।
नाल चेला है आनंद जो रिश्ते दे चचेरा बिरा सी चेला बन गया सी नाल सी उने करमंडल पानी दा नाल भर लिया बई दोपहर दा वक्त बिहार दी गर्मी आखिर दो को दा पेंड है चार मील दा पेंड है अजे अधी वाट तय होई होवेगी महात्मा बुद्ध ने आख्या आनंद तू नाल पानी लेंदा हां लेंदा दे करमंडल दे दिता सारे दा सारा एक बूटे च पा दिता आनंद कहिंदा है भगवान सानू प्यास लग सकती है अजे ते रस्ता बहुत रहिंदा है अद्धी वाट तय हुई है सानू भी प्यास लग सकती है तुसी सारा पानी दे दिता महात्मा बुद्ध ने आख्या सानू प्यास लग सकती है ए प्यास तो मर रहा सी साडे कोल करमंडल पानी होवे आनंद मैं किसे नू प्यास तो मरदा नहीं देख सकता हां पानी नहीं सी गलवक इस नू पता है विद्वान की कहंदे हुंदे ने सतगुरां ने दसवंद दी मर्यादा बनाई है एक मनुख कोल 10 करोड़ रुपए ने ते एक दे कोल सिर्फ 10 ने एक ने 1 रुपया दसवंद कटिया दान कीता है एक ने 1 करोड़ कीता है बराबर ने इस चक्कर च ना पैना जिन्हें करोड़ दान कीता है महान दानी है कख नहीं दाने ओदा 1 रुपया उस करोड़ तो घट नहीं है ओदी कुल संपदा ही 10 रुपए से एक करमंडल पानी दा ही सी ओदे कोल महात्मा बुद्ध कोल होर कुछ भी नहीं सी दे दिता मोगरे में मनते तनते धन लो सिर है सब ही नहीं को कलगीधर पातशाह कहंदे ने मेरे घर दे तन करके मन करके धन करके जो कुछ भी है सब जगत दा सब खालसे दा अपना कुछ भी नहीं अमीरी माल असबाब तो नहीं है एदे कोल इतनिया महल माड़ियां ने एदा इतना बैंक बैलेंस है एदे कोल इतनी धन संपदा है अमीरी नापी जांदी है दिल तो अगर दिल दे बिरा वास्ते भी थां कोई नहीं प्यो वास्ते भी थां कोई नहीं मां वास्ते भी थां कोई नहीं तो इनू अमीर आखोगे महाशोम मनुख है कुछ भी नहीं गरीब मनुख लक्षण दस देने स्वभाव दसदा है तरजे जिंदगी दसती है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया हे प्रभु मेरी उंगल पकड़ मैं नहीं चल सकता मैं तेरे रस्ते ते चलते पिया पर उस बच्चे दी तरह जिन्हें अज चलना सीखे है ते जिस बच्चे ने अज कदम पुटे ने कितने क पुटेगा गुजरात दे इलाके च मैं देखा है जिस दिन बच्चा पहला कदम पुटे ना ते ओ घर दे शगन मनांदे ने लड्डू वंडदे ने नचदे ने खुशियां मनांदे बच्चे नू चलना आ गया है फिर जिस दिन बच्चा जबान खोलन लग पैंदा है पहला बोल बोलदा है फिर खुशी मनांदे ने फिर ओ अपना इसनों अपने ढंग नाल मिठाइयां बना के वंडदे ने पड़ोसियां नू बुला के रिश्तेदारां नू बुला के साडा बच्चा बोलन लग पे है ओदी जबान चो बोल निकले है 4-5 साल दा बच्चा हो जाए ते बोले ना मां बाप नू चिंता हो जाती समझ नहीं आउंदी बोलदा नहीं पे 3 साल दा बच्चा हो जाए कदम ना पुटे खड़ा ना होवे मां बाप नू चिंता हो जाती पता नहीं गल की है कदम ही नहीं पुटदा खड़ा ही नहीं होंदा महाराज कहंदे ने हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग ते पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज कदम पुटे है जिदा ध्यान थोड़ा जिहा भी शब्द दी तरफ गुरु दी तरफ चले है समझ लो उसने कदम पुटे है ते जिदा ध्यान ही नहीं चलिया सुरत शब्द दा मेले सुरत ध्यान नू कहंदे ने सुरत शब्द दी तरफ गई है कि नहीं पाठ कर रहे है सुरत उदे च है कि नहीं सुरत स्रोत नू भी

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणां दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट

का जो जहरीला ना हो, बाकी तो सब जहरीले। 97% सप जहरीले नहीं होंगे। दूसरा, सप का डंगे होया शायद बच भी जाए, बंदे दे डंगे हुए तो बचते भी कोई नहीं, यह भी मैच कर दे। 2.5 करोड़ बंदियां का कातल है हिटलर, ते 3 करोड़ नू मार के ते 3 करोड़ नू उजाड़ के चाइना दे माओसे तुंग ने क्रांति लैंदी सी। कोई सप 3 करोड़ बंदे मार सकदा है? सप डंग मारे उदी जहर खत्म हो जाती है, फिर 15-20 दिन लगनगे जहर बनदे। मनुख ते मुल्कां दे मुल्क उजाड़ के भी उदी जहर खत्म नहीं होंदी, जहरीला बड़ी जहर। मनुख इतना जहरीला, बिन सिमरन जैसे सर्प अरजारी, त्यों साखत जीवे नाम बिसारी। बिन सिमरन धिग कर्म करास, काक बटन बिष्टा में वास। सिमरन तो बिना मनुख इंज जीवदा, सुभाव करके सुरत करके मन करके, जैसे कौआ। कौआ दी बोल बड़े कुरख्त ने, ते कौए दे मुंह दे गंदगी आउंदी है। कौआ कहां कपूर चराए, जो फिक्का बोले और गंदा बोले, इते कौवे दी फितरत है। अब सुन के हैरान होगे, 10 पाप मनदे ने, जीवन भर रिपीट होंदे ने, हजारां लखां बन जांदे ने। ते 10 पापां दे चों 4 पाप जबान दे ने, 3 पाप मनदे ने, 3 पाप तन दे ने। इस तरह 10 दोख मनदे ने। भारत दे ऋषि मुनि और गुरु नानक देव जी महाराज ने बकायदा जिक्र किया है, 10 पुरब सदा दशहरा। परमात्मा दा नां ही 10 पुरबां वर्गा पुरब है, जो 10 दोखां नूं हर देंदा है, मिटा देंदा है, दशहरा। 10 दोख केड़े ने, 10 पाप केड़े ने? 4 पाप जबान दे, 3 पाप मन दे, 3 पाप तन दे। 4 पाप जबान दे केड़े? प्रथम मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। दूसरा व्यर्थ बोलना, वे फिजूल दी गपशप, एवें सिर खपाई व्यर्थ बोलना। तीसरा फिक्का बोलना, ते चौथा कौड़ा बोलना, जहरीला बोलना। ये 4 पाप जबान देने, 3 पाप मन देने। किसे दे तन बारे बुरा सोचना, किसी दे धन बारे बुरा सोचना, और इसे तरीके दे नाल किसी दे माल असबाब बारे बुरा सोचना। जान बारे बुरा सोचना, माल बारे बुरा सोचना, किसी दी इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना, असमत बारे बुरा सोचना। सारी दुनिया दे खतरा भी 3 तल ते हुंदा, चौथा कोई खतरा नहीं आउंदा। अगर कोई मनुख आखे ना मैं खतरे च हां, तो जान नू खतरा होवेगा। ते जे जान नू खतरा नहीं, ते माल नू खतरा होवेगा। ते जे माल नू नहीं, ते इज्जत आबरू नू खतरा होवेगा। होर की खतरा होंदा? होर कोई खतरा नहीं होंदा। खतरा ए 3 तल ते होंदा, होर कोई खतरा नहीं होंदा। जान नू खतरा, माल नू खतरा, इज्जत आबरू असमत नू खतरा। मन दे 3 पाप ए, किसे दी जान बारे बुरा सोचना, किसी दे माल बारे बुरा सोचना, किसी दी इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना, ते बुरा सोचने दी खुल है। किसी वक्त फिर मैं इसका खुलासा करांगे। ये 3 पाप मन दे ने, ते 3 पाप तन दे ने। किसी दी जान खो लेनी, किसी दा माल खो लेना, किसी दी इज्जत आबरू लुट लेनी, इस तरह ये 10 पाप बन दे ने, 10 दोख बन दे ने। जेदे 4 दोख जबान देने, 4 पाप जबान देने, रसना देने। महाराज कहते जो फिक्का पिया बोलदा, कौड़ा पिया बोलदा, गंदा पिया बोलदा, इनू मनुख आखोगे तो कौआ है, कां है। कौआ कहां कपूर चराए, बिन सिमरन कूकर भय काम, साकत बेसवा पूत ने नाम। सिमरन तो बिना मनुख इंज जीवदा जिवें कुत्ता। इस सतगुरां दी बाणी दे वाक, क्यों? कुत्ते नूं कुत्ता नहीं चंगा लगदा,
और अक्सर

भुगत मरे पुरख जावन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सवटारे जो कल को एक बार ताके काल निकट न रक्षा होय तो सब कला।